धार्मिक समारोहलाई अझ पवित्र भव्य तथा सफल बनाउने हाम्रो विश्वास रहेको छ। कार्यक्रम हुने विशेष दिन भाद्र 12 गते शुक्रबार लाभव छोर्तेन राम्ने पूजा छेवान तथा उद्घाटन समारोह समय बिहान 8 बजे स्थान मकालु गाउँपालिका याङले खर्क मिति 2083 साल भाद्र 12 गते आयोजक लाभव छोर्तेन निर्माण समिति संयोजक लाक्पा रिन्जे शेर्पा 9893996676 संयोजक पेम्बा शेर्पा 9865531322 धन्यवाद थुचिछे।

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले दिउँसो एक बजे।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 4 बजे।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रभागर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153 87775।

पाखरीबास एफएम समय सूचना। यो पाखरीबास एफएम को समय हो। अहिले रात को 9 बजे